केवेनष्टेयाता न एङता सोवाने आ याय आ याय अह हे मंग मंग कोतोरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कोतो

तका को पावा कै पछे चेता आ अम छे वे पिछोते पमयं यकय हे क्यों नम्या तालावा ये ये ये हे ये हे या हे या हे या को ने नम नवत क्या ओवे ओवा कै कौन मो कै कै चाओ यंग।